एकदम थोड़ा मन उल्टी होएगा, एकदम हर एक बंदा का मन फिर शुरू होएगा, सब कॉन्शियस तो थॉट शुरू आएगा, फिर तुसी अंदरों वाहिगुरु एक साथ आएगा, वाहिगुरु कटेगा, दोबारा आएगा, वाहिगुरु कटेगा, फिर हौली हौली अपना मन साफ हो जाते, जे असी हर रोज करते।

हर जग में परवरे हो। निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट होए ते फिर वही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रही है ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहा। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सी गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़दे हो, असीं की करांगे। साहब कहण लगे की चाहुंदे हो कि महाराज दर्शन किदे करांगे, गल्लां किदे नाल करांगे, पूजा किसकी करांगे। साहब कहण लगे पूजा तां तुहानूं मैं पहलां ही एक अकाल दी समझा चुका, पूजा अकाल पुरख दी करनी, मेरा दर्शन करना है तां खालसे दा दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने गुरबाणी दी विचार करनी, गुरु के बचना दे अनुसार ही होगे, गुरु के बचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे, गुरु नाल गल्लां करदे जाओ। इत्थे भाई साहब कहिंदे ओही वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु दा रूप धारण करके प्रगट होया ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तां गुरसिखां दी मन्नेगा, साध संगत दी बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दी लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नूं करन कारण समर्थ वाहिगुरु साध संगत दा करे कराए, सारा कुछ उहदे भंडारियां च भरिया पिया पर साध संगत दा दे दवाया, साध संगत जिन्हू चाहे दवा देवे, जो चाहे ले।

ऐसा पुल है। भाई साहब कहंदे ने एक वारी नहीं पांच वारी गंगा चला जाए, पांच पांच वारी प्रयागराज ला के त्रिवेणी दे इशनान करे, एक सिख नूं इशनान करा देवे, एक सिख नूं नहाउण वास्ते इशनान वास्ते पानी भर के देवे, उहदे इशनान दा प्रबंध कर देवे, इन्ना पुल है। कहंदे ने सिख नूं प्यार नाल पानी पियाता, वैसे तां सब नूं पिआउणा चाहीदा, पर गुरु के सिख नूं गुरु शब्दी विचार वाले नूं गुरु प्यार वाले नूं आदर सत्कार नाल पानी पिया दिता। समझ लो कुरुखेत्र की यात्रा होगी, कुरुक्षेत्र वर्गे महान तीर्थ की यात्रा होगी, ते जे कितें सिख नूं प्रशादा छका दिता प्यार नाल भाव करके, लंगर छका दिता है ते समेत जग कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत वड्डा पुन हो गया। भाई साहब कहंदे ने एक होर वड्डा पुन भी है, एह तों वी वड्डा पुन है, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दी, कोई सोने का मकान एक अद्धा बना सकता, मिट्टी का ही बनाने मसा मसा बनना, एक नहीं सत सत मकान सोने दे कोई बना के दान कर दे, जे कि सिख नूं शब्द सिखा दे, शब्द सुना दे, शब्द के लड़ ला दे, उदो वड्डा पुन। सत सत सोने दे मकान बना के दान करन नालों एक सिख नूं शब्द सिखा दे, गुरु के शब्द के लड़ ला दे। एक होर गल कहंदे ने साधा दे दर्शन करन वास्ते, महात्मावां दे दर्शन करन वास्ते, पुन्न आत्मा दे दर्शन करन वास्ते लोग तीर्थां ते भटकदे ने, पर भी वारी किसे साधु दे दर्शन करन जाना एक पासे ते किसे गुरसिख नूं मुठियां भर के सुआ देना एक पासे। इस छोटे जतन नाल वड्डा फल, बहुत वड्डा महात्म है, गुरु के सिख दी खुशी गुरु की खुशी है। और एक बार ऐसा होया सी, भाई सत्ता बलवंड कीर्तन करके हटे सन, उठे ते अगों बाबा बुढ़ा जी मिल गया, कहन लगे भाई सत्ता अज मैं पछड़ गया, एक शब्द मैनू भी सुना दे। कहन लगे बाबा इस तरह थोड़ा कीर्तन सुनाया जाता, उथे आके सुनिया कर। बाबा निराश होके जा बैठा, संगत गुरु के बचन सुन लै, साहब गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दे बचन सुन लै। शाम होई कीर्तन करन आउण बैठे, महाराज दूजे पासे मुंह करके बैठ गए, परेशान हो हथ बन्ने, महाराज कहन लगे नहीं तुहाडा कीर्तन सुनना, तुसी मेरे सिख नूं शब्द नहीं सुनाया, मेरे की लगदे, मेरे सिख की खुशी नहीं लई, मेरे की लगदे,

भगत नामदेव जी अपने शब्द विच ये दसदे हन कि दुनिया दे काम करदे हां परमेश्वर दा नाम किस तरह जपना है।

काम करते हैं नाम किवें जपना है सिख्या लै पंगोड़े कोलो ते बच्चे कोलो। जिस तरह एक मां अपने बच्चे नू पंगोड़े विच पा के अंदर बार

कभी किसी ने राम का नाम नहीं लिया, पर यह कबीर ऐसा पैदा होया है, ये हर वक्त राम राम करता रहा। जदू दी इन्हें माला फड़ी मैं कोई सुख नहीं दे।

मैं ओदा पुत्र ही नहीं। पोंगड़ा पुत्र नुके है, ऐ मां तू कहनी नाम ना जाप, जा मैं तेरा पुत्र ही नहीं ते ना तू मेरी मां है। ए पिंड ए शरीर खत्म हो जाए।

बड़ा उदास रहना। जेड़ा नाम तेनू हसन खेडन नहीं देंदा, बेटा तू उस नाम नू वसार क्यों नहीं देंदा। ता तन गुरु नानक साहब दी अखां विच जल भर आया ते कहन लगे, मां आखा जीवा विस

मैं परमेश्वर दे कोल नूं विछड़ के आया। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिहड़ी मैं खावां ते परमेश्वर दे नाल मेरा मेल हो जाए। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक मैनू भुख दा दुख है। मैनू घड़ी मुड़ी भुख लगती है, कादी साची नाम की लागे भूख। तेरे कोल कोई एहो जी कुड़ी है जिहड़ी मैं खावां ते ए मेरी नाम दी भुख।

वैद ने हाथ जोड़ ले कहंदा ऐ नानक मैं ता तेनू कुछ और समझिया सी पर तू ता आप रब निकले जेड़े दुख तू दसे ने इना दुखा दी दवाई मेरे कोल किथे ऐ नानक पातशाह मेरी ते कृपा कर मेरे मन नू बड़े रोग लगे ने मेरे मन दे रोग दूर

अंगल की ते कुमारे गोटी जी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक गुरम हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे हर तुम बड अगम अथाह।

वटी हूँ बड़ा अबार तेरा मंदबार वटी हूँ बड़ा अबार तेरा मंदबार निर्मल निर्मल सूजा निर्मल निर्मल सूजा सुचो सुचा सुचो सुचा सुचो सुचा सुचो सुचा अंत न अंत।

0: निर्वैर पुरुष सतगुर प्रभु जाते
1: निर्वैर पुरुष
0: सदगुरु प्रभु जाते हमें अपराधी तुम बच जाते जिस पापी को

0: कलशम बेनती कृपा कर सुन
1: बेनती शर बेनती बेनती हर कृपा कर सुन बेनती
2: निरा निरा निरा निरा

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाणे आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हास्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साढ़े अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा।

सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं, सानू सुमति बख्श रहे हैं। ऐ मनुख जेड़ी गल चेते रखन वाली सी उनू तू भुला दिता, तैनू चार कम तां चेते रह गए, खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरण, तैनू विसर गया। जिस वाहिगुरु ने संसार ते भेजिया है उसने सदना भी है, जिस वाहिगुरु ने तैनू अमोलक स्वासां दी पूंजी, हीरे लालां तो महंगे तेरे स्वास, ते उसने हिसाब भी तो मंगना है। उना स्वासां दे लालां नाल कितने कु तू नाम दे लालां दे वर्ज कीते हन, उथे ता लेखा पुछया जाना। इसलिए सानू चेता करा रहे हन धन गुरु नानक पातशाह, कहंदे ओ विसर गया है मरना, चेता कर मालिक ने सदना तैनू।

मत सेती घर जाओ। इना अमोलक हीरिया लालां तो महंगे स्वासां दे नाल जे तू नाम दा वणज करके जावेगा तां तेरी इज्जत रह आवेगी, तेरा आउणा सफल हो जावेगा। जिस कारज लई मालक ने तैनू घल्लिया है उहदी सफलता ही सिमरन विच है, नाम विच है। ऐसा ना होवे अखां नीवियां पा के तू जाके बह जावें जिवें जुआरिया हार के बह जांदे चले जुआरी दोए हाथ जा। हजूर कहंदे ने इन्हां अमोलक स्वासां दे नाल ओ धन कठा कर जिहड़ा इत्थे भी तेरी सहायता करे। जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावें दरगाह विच भी तेरे नाल होवे। जदों तू आया सैन तेरे कोल स्वासां दी पूंजी सी, ऐसा ना होवे तू जावे ते तेरे हाथ दोवे खाली हो, अपनी प्रतीत भी गवा के जावे। इसलिए हजूर कहंदे ने आया सै स्वासां दी पूंजी लैके जा तां नाम दा धन खट के जा, फिर तेरा आना सफल है।

नाम रूपी अमृत पीता है। ओह ही सुचे रहे हन सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा। ते जे सिमरन नहीं कीता विकारां विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नू ही कलंकित करके जाएगा। किसे माड़े पुरुष नू संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या इसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेन कोई कोल ना बहन देवेगा। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया।

गुरु साहबाने उस वक्त ए शब्द उचारे काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है ए सारा संसार डूबता जा रहा है कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड़ दियो कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनु ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की समझांदे ने

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है कि मैं

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर, दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन, ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बनियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े, ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं ता संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उत्थों भजिया। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान

मैं ता मथा टेकिए कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियों नु क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया ओदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इं बयान कर

जिन्हां ने गलां विच माला पाईयां ने लोटे हाथ नी बग ते हत्थां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने लकड़ा भी धो के बाल देने पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्ला बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेकी संत नु पुछया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

समझ लिया कि मेनू थैली लकोंदे आ नामदेव ने देख ले। पेखी संत कहन लगा सेठ जी ओ जिड़ा नामदेव सामने बैठा सदा पे आए ना तुहाडी वासली ओदे कोल है। सेठ उठिया ते भगत नामदेव दे गल पै गया कहन लगा मेरी थैली दे। होर भी दो चार आदमी कठे हो गए ते सारे भगत नामदेव नू कुटन लग पए। ओ जड़ा पेखी संत सी अपना वड्डा पण दसण वास्ते अपने आसन तो उठे उन्हां लोकां नू कहन लगा नामदेव नू मारो ना जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही उधर एक हवा दा बुला आया उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोका ने नामदेव नू छड़ दिता ते उस पेखी संत नू फड़ के कुटन लग

पर बगला जिड़ा है एक लत दे पार अखां ते बंद हुंदियां ने पर कैरी अख करके देखदा रहिंदा है कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है। ओ ते मत्था टेकदी ने संत समझ के ते ओदों ही पता लगदा है जदू बगला मच्छी नूं मुंह विच पा के ते उड्डण दी करदा है। भगत जी कहिंदे ने ए संत भी ओहो जे ने उस बगले दी तरह के जदू दा लगदा है इंसान नूं लुट पुट के खा

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तो आड़ा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए ने, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया उदे नाल मिल गया है भाई, तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा तू

गुरु अर्जुन देव पातशाह जी उपमा कर दिया हूं। पट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जुन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जुन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जुन देव। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोलतायो। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जुन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जुन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जुन देव महाराज। और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए। भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिनिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखी है। साथ संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरा दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया है कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती। इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, ओ स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया। ताई आखिया

दही रिड़क के लस्सी बनाई। एक थाली विच रोटी रखी, नाले लस्सी लई ते ठाकुर दी सामने

करने नूं की पता कि लोग ठाकुरां नाल भी ठगी करदे ने। थोड़ी जी चीज पुजारी मूर्ति दे मूंह नूं लांदा, अद्धी आप रख लैंदा, अद्धी चीज लोकी कर लै जांदे, पर तन्ना समझदा इह पत्थर दीआं मूर्तियां सब कुछ खांदियां ने। ते तन्ना भी कहिंदा ठाकुर रोटी खा। ठाकुर मैनू इह नहीं पता आरती किवें करी दी, मैनू इह नहीं पता अरदास किवें करी दी, पर ठाकुर मेरे मन विच प्यार बड़ा है, कृपा कर ते रोटी खा लै। हाथ जोड़दा तन्ना, मिन्नता करदा है, मत्था

ना ठाकुर रोटी खांदा है ते ना तन्ने ने रोटी खादी। अगला दिन भी लंघ गया, रात पै गई, ओ भी लंघ गई, तीसरा दिन चढ़ गया।

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने कि थे रब

मुस्कुरांदे हुए कहन लगे नहीं तनिया पहला तू खा सत्संग ते उन्हां दियां गल्लां ने जिन्हां दे मना विच प्यार है कैसियां गल्लां ने परमेश्वर दियां ते ओदे प्यारियां दियां जिदे विच कोई छल कोई फरेब कोई धोखा नहीं।

परमेश्वर मिलिया ते ओ तन्ना हुण तिन्ना लोकां दा ज्ञाता हो गया। ते ठाकुर कहन लगे, तन्या तू याद कीता मैं आ गया, हुण दस तैनू चाहीदा की। उस वक्त तन्ने ने ए शब्द उचारिया, कहन लगा, गोपाल पहली गल ए

0: इंसान इस गल की खोज ना कर पैदा कितों होया सा कितों पैदाइश तेरी है एक नापाक पानी के कतरे तो वजूद ऐदा का खूबसूरत बनाई बैठा है ते वजूद करके तू अपने शीशे मोहरे जो खलो जाता तो तेरा चेते नहीं करता हटन कदी वेख्या कर जिसने तेन खूबसूरती दिती है पे ओ किड्डा खूबसूरत होवे ते कितों तू पैदा होया बंदे खोज दिल हर रोज
1: करीमल कमाल है
0: करीमल कमाल है गुरु गोबिंद सिंह जी कहते वो कैसा है करीमल कमाल है कि हुसनल जमाल है वो खूबसूरती का मुजस्मा ही है बस दी पर यह सोचा कर कितों उपजे दूजी गल कह रहे तीसरी गल जिंदगी है नाटक जेड़ा ना इट इज जस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड यह तो खत्म होने वाला ही है और तू हाले अपने आप सवारी जाता इसे काम से सारा दिन वेस्ट ना कर दिया ना ना ना ना यह सवाल अपने मन से करके कितों उपजे कह रहे कह मान समावे बंदे खोज दिल हर जो तू ये खोजेगा ढूंढेगा तलाश करेगा ना फिर परेशानी मां दुनिया में बहुत ही देर नहीं रहना मेरे आदर योग मास्टर जी ने सवेरे अरदास तो बाद अपना बचने इतों आरंभ किया कि संसार नाशवंत है मैनू उस वेले याद आया सुनना जी पंजाबी विच ए जग सराए मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए ए जग सराए मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए शदाद नमरूद फरून जाए बे दावा बन खुदा कहा गए अकबर शाह जाए विच दिल्ली दे जी फेरी वांग बन जा रहा पा गए शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई बजा शाह मुहम्मदा रब और रब दे वरसा है भगवान भगवंत दे वरसाए हुए अकाल पुरख दियां जोतां संभाली फिरन वाले ए महापुरश क्योंकि दो चीजा रहिंदियां संसार विच गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने

बड़ा दुख होया मन बड़े क्रोधित होए मन विच रिसक गनेरी खाई आख्या ए कितरों आ गए हन भगतियां पाई भगत आन लोटा जोगी लिया छपाई बाबा जानी जान पुरख कढ़िया लोटा जहा लुकाई वेख चरित्र जोगी खुन साई ए चरित्र वेख के योगियां ने बड़े मन विच क्रोध कीता रास तारियां ने आके रास पाई ते जो लोग खुश होके इन्हां

फिर उदासियां वाला पेक बनाया ते हुण फिर संसारी कपड़े पहन के इत्थे बैठे हो। तुहाडा की धर्म है? भाई साहब गुरदास जी लिखदे हन, खादी खुणस जोगी सरा, गोश्त करन सबे उठ आई, पुछे जोगी पंगर नाथ, तोए दुध विच क्यों कांजी पाई, फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन हाथ ना आई, ते इस दा भाव की सी, आख्या पेख उतार उदास दा वत, क्यों संसारी रीत चलाई, उदासियां वाला साधुआं वाला पेख लहा के तू फिर संसारी कपड़े पा ले हन। इस तो भाव है कि फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन हाथ ना आई, पेख उतार उदास दा वत, क्यों संसारी रीत चलाई। इसका जवाब दियो तां धन गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिता, नानक

सच दा राह यह नहीं है कि जिस संसार नूं तुसी निंददे हो, जिस ग्रस्त दी निंदिया करदे हो, उना ही ग्रस्तियां विच्चों तुसी पैदा होए हो, उना ने ही तुहाडी पालना कीती है। ते आज भी जदों तुहानू भुख लगदी है, उना दे देरे ते उना दे घर जाके अलख जगांदे हो। जिन्हां कोलों अलख लैनी, भिख्या लैनी, उना दी निंदिया करनी, एदा मतलब है तेरा गुरु कुचज्जा है, कोई सुचज्जा नहीं। नानक आखे पगरनाथ तेरी माओ कुचज्जी आही, पांडा तोए न जाते उन पाव कुचज्जे फुल सड़ाई। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, ओए सिद्धो होए अतीत ग्रस्त तज, फिर उनके घर मंगन जाई। अतीत होके ग्रस्त छड़ के पहाड़ा दियां कंदरां विच तुसी जा बैठे, क्या तुहानू ईश्वर ते भरोसा नहीं कि जिसका तुसी नाम जप रहे हो वह तुहानू रोजी देवेगा? ओ जेड़े रब दे प्यारे होंदे आ ना, ओ किसे कोलों अलख नहीं जगांदे, मंगिया नहीं करदे, ओ तां दरवाट उपर खर्च मंगे, जबै दे तां खाए। ओ तां खांदे हन जे अकाल पुरख वाहिगुरु देवे। इस लई नानक आखे पंगरनाथ तेरी माओ कुचज्जी आही, पांडा तोए ना जाते उन पाव कुचज्जे फुल सराई। होए अतीत ग्रस्त तज, फिर उनके घर मंगन जाई, बिन दिते किश हाथ ना आई। जदों ऐसे सच्चे सुचे बचन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सुने ना, ते इना नू बड़ा रिद्धियां सिद्धियां दा हंकार सी, मान सी। जे कोई सच दे पंधाऊ होंदे तां चरण फड़ लैंदे, मन जांदे भाई आप सच कह रहे हो। पर इना ने मन विच क्रोध कीता, भाई कल दा ए बालक, असी लंबेरी उम्र दे बुजुर्ग, फिर रिद्धियां सिद्धियां दे मालक, ए साडे सामने इस तरह बोलिया, असी हुणे दसदे हां। इना सिद्धां ने, इना योगियां ने अपने योग बल नाल कई कई तरह दे डरावने रूप बना के गुरु नानक नूं डराउणा चाहिया। एक पासे भयानक शेर बन के गरजे, दूजे पासे अजगर सप बन के मुंह विचों अग दी वर्खा कर रहे हन। कोई उड रहा है, कोई चुड़ैल दा रूप धारण कीती बैठा है, कोई पूतना बन के डरा रहा है। मर्दाने आख्या गरीब निवाज, हुण की करांगे? धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, ए तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदे, ए साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदे, क्योंकि नाम दे अगे इना दियां रिद्धियां सिद्धियां कोई कम नहीं कर सकदियां। उचारण करो श्री वाहिगुरु। भाई साहब लिखदे हन कि इक ना नाग होए पौन छोड़िया, इक ना बरखा अगन वसाई, तारे तोड़े पंगर नाथ, एक चढ़ निर्गानी जल तर जाई, सिद्धा अगन ना बुझे बुझाई। जदों कुछ ना बिगाड़ सके ता ए योगी आके गुरु नानक नूं कहन लगे, भाई असी इतना चमत्कार विखाया, कुछ तुम्ही विखा। ता तन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, सिद्ध बोलन सुन नानका, तोए जग नूं क्या करा मात दिखाई, कुछ विखा ले असा नूं भी, तू क्यों ढिल अवे लाई। बाबा बोले नाथ जी, असा वेखने जोगी वस्त न काई, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई, शिव रूपी करता पुरख चले नाई तरत चलाई, सिद्ध तंत्र मंत्र कर चढ़ पे, शब्द गुरु के कला छपाई, ददे दाता गुरु है कक्के कीमत किने न पाई, सो दीन नानक सतगुर शरणाई। बाबा बोले नाथ जी, शब्द सुनो सच मुखों अलाई, बाजो सच्चे नाम दे होर करा मात, असां ते नाही बस्तर पैरो अगन के। बाबे ने आख्या।